स्थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगीधर पाछा काल दी गति अगाध कथन करदे हन। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहिब ते ऊने साहिब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर, उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीन लई, ज्यो पानी पीन लगदा तां इस दे मुख विच मच्छी फस जांदी है। दम रुक गया, ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा है बाज ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई। ते ज्यों इस मच्छी नू चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे शिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखा कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण तै चार, चार मरण ते शै मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर जी कथन करदे हन कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी। जो निशाना मारिया मिर्गनी नूं तां मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होने वाला सी क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नू दस्या, शिकारी नू दस्या, ते शिकारी ने झट तलवार कढ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उस वेले शरीर छड गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए, इन्हां चौहां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घरवाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया, हुण मेरा जीवन त्रिग है, वो भी उथे ही टकरां मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन, ये छे दी गिनती कीती है बाणी दे विच। मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न ते पेट दा बच्चा, ये चारे पुरख हन। शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ये दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया तां अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई, ते इस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नू जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया,
ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਝੱਟ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ।

इस तरह तू सानू कट रहे हैं, पर याद रख तू ज्यों ज्यों सानू कटदा है असी कटदे नहीं, अगे नालों वधदे जा रहे हैं। और कटदा कटदा

प्रकार के शब्द गुरु गोबिंद सिंह महाराज अजे बाकी ने तो फिर आप जी शरण करावे हूँ आओ केवल तो केवल सत श्री अकाल के जकारे छकने ने तो रसना कोई भी बांझी ना रहे दोबारा ना आखन की लड़ पवे के चढ़ती कला जकारा छो जा उची आवाज छो खास करके जो सन्मुख बैठे ने सामने वो तो जरूर ही ज्यादा जोर लागे क्योंकि पिछे वाले तो हो सकता कह की कीमता भाई साहब सानू देखते कि नहीं देखते जा साड़ी आवाज माइका तक फरे पहुंचनी कि नहीं पहुंचनी पर मैं कहना कि जे तुम पिछों आवाज गिजाओगे तो ताड़ी आवाज इतने माइका तक पुज जाएगी इस वास्ते आओ जे तुम जोर लाओगे तो हो सकता असी होर दुगना जोर ला के आप जी ने दिखा रहे उसकी आवाज सुनाइए क्योंकि साढ़े पास स्पीकर ने इस वास्ते आओ बड़े ध्यान दे नाल सत श्री अकाल दे जकारे शब्द है सच फतेह बुलाई गुरु की जीत्यो रण पर सब दैंत अरन को घेर कर कीजे प्रहारा सब दैंता नु घेर के ते प्रहार करना वार करना सत फतेह बुलाई गुरु की जीत्यो रण पारा ओ गुरु गोबिंद होए प्रगटिया दसवें अवतारा साहब गुरु गोबिंद सिंह जी प्रगट होए दसवें पातशाह जी आओ बड़े प्यार नाल इहदे विच बहुत ही सुंदर पंक्तियां हम ध्यान दे नाल सरवण करनियां हन पंक्ति सरवण करके फिर सत श्री अकाल दा जकारा।

अकेडमी गुरुद्वारा बड़ू साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश दियां बीबियां दे ढाडी जथे दी इन्नी सेवा प्रवान करो। बुलाओ फतेह ते

मिलया तेरे कदम सेवा करन लई परपकार करन लई नहीं उठे ता तेरा जीवन अधूरा है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बख्शिश कर रहे हैं, बिन संगत ऐसे समझो जैसे पशु ढोर।

ये पल दी खबर नहीं, अहंकार कर रहे हैं। इसे लिए हजूर कहते हैं, तन जोबन का गर्भ ना कीजे, कागद ज्यों गल जाएगा। पता नहीं अगला पल किहो जिहा आ रहा है। तन गुरु नानक पातशाह संसार नूं तारदे होए एक नगर दे बाहर जा बैठे, वेख्या के सारे लोग बड़े खुशियां मना रहे हैं, ते झट बाद वेख्या के रोना पिटना पै गया है। इत्थे मर्दानिया आ हुणे तां खुशियां मना रहे सन, ते हुण वैन पै रहे हन जाके पता करके आ। मर्दाना जदों गया पता करके आया तां आख्या गरीब नवाज सच्चे पातशाह, एक सेठ दे घर लड़का होया सी। बड़ी मुद्दत दे बाद औलाद होण दे कारण सारा नगर बड़ियां खुशियां मना रहा सी, पर अकाल पुरख वाहिगुरु दी नेत नाल ए लड़का शरीर छड गया, ते ओदे विंजोग विच हुण रो रहे हन। मर्दानिया ए संसार है ही दुख सुख दा एक नगर है, इत्थे पता नहीं लगदा। जिस तरह समुद्र विच बेड़ा जा रहा है, पता नहीं किथे तूफान आ जाना है, किथे शलां उठ पैनिया हन, किथे शांत हो जाना है। ए साडा जीवन भी ऐसा है, पर प्यारी साध संगत जो गुरु की बाणी सानू बख्शिश कर दी है कि भाई राज भाग दुनिया दे धन दौलत विच सुख नहीं हन, सुख तो हरि दे सिमरन विच है। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। जिन्हें हरि दा सिमरन कीता सुखी तो ओ हन। कितने राजे महाराजे चक्रवर्ती पातशाह संसार तो चले गए हन, ते भाई नाम किन्हां दा रह गया जिन्हां ने हरि सिमरन कीता। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज क्या करदे सन कि इस धरती ते इतने राजे महाराजे वजीर हो चुके हन, जदों असी एक कदम रखदे हां तां एक राजे दे सिर ते दूसरा वजीर दे सिर ते रखदे हां। इतने राजे महाराजे चक्रवर्ती पातशाह हो चुके हैं, पर अज नाम किन्हां दा अमर है जिन्हां ने जपिया है श्री वाहिगुरु। तो इसलिए हजूर कहंदे हन, भाई पता नहीं अगला पल किहो जिहा आवेगा, इसलिए जप जप के इन्हां श्वासां नूं सफल कर लै। तेरा संसार ते आउणा भी ते संसार तो जाना भी तन्ता दे।